0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: जबरदस्त हिट्स,
6: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
7: फजान 97.1 FM,
6: आई लव इट।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzzah 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें राया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, राया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिंग रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 0759315069। राया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

तन्हाइयों में जाने दे, अब मुझ पे जो गुजर रही तुम्हें तो कोई खबर नहीं, तेरे तरीके ही करें बेनकाब तुझे, दिले बेताब करे बेजार मुझे, दिल बंजर कोई जिंदा शजर नहीं, चंद यार ही अब दिखे मेरे साथ मुझे, पढ़े जहन मेरा समझ के किताब मुझे।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: This is a public service announcement.
6: The station
7: that plays
8: foot tapping music.
9: Azar 97.1 FM.
10: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप्थ।

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM.
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention!
3: Property owners and letting agents, are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रापता करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रापता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: This is a public service announcement.
9: Everybody. The station.
10: That plays
11: foot tapping music.
12: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 077-021-0792।
4: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ, भंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद ली सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते सुहागा ए, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर देने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: able to identify.
1: It's commercial time.
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
3: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, राया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफिल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त लेने।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 011-592-9884 या 077-021-0793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का। Hit music, entertainment, poetry, news and health, all under one roof. Our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.

0: भी तेरा कोई मुकाम।
1: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
2: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
3: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077 30 791 412, or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
4: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
5: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सैट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
4: सलासा ट्यूशन सेंटर?
5: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्टफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
4: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
5: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
4: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
6: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01115916823। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
7: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
8: Zabardast hits.
9: Music never sounded better.
10: Fazan 97.1 FM.
11: I love it.
12: You are listening 97.1 FM.

सितम खुद देखे है खफा कोई, वफा भी करके है बुरा कोई, ऐसा भी करता है भला कोई। छोड़ो ना करता मैं ख्याली बातें, लाता ना रिश्तों में पुरानी बातें, बना इश्क की मिसाल कोई और बना इश्क पे सा

0: It's commercial time.
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: आरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स, होर कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी कम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि ओ हर तरह दा वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चले उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राबता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्त दा मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: It's commercial time.
1: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
2: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
3: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
2: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
3: मुगल बिल्डर्स?
2: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
4: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लैमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो, करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
2: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
3: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
2: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले, भरोसा तामीर करें।
5: Get ready to move.
6: It's all about the beats.
7: Wow, FM.
8: Only tune Super Hit Channel.
9: Fizz on 97.1 FM.
10: Zabardast hits.
11: Music never sounded better.
12: Fizz on 97.1 FM.
13: I love it.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकया ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड एंकिन रोड नॉटिंघम या अभी रब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपर मार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: आर्याना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। आर्याना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 Plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डैब।
13: You are listening 97.1 FM.

0: hit music, entertainment, poetry, news, and health. All under one roof, our radio station surpassing all boundaries and keeping you connected. It's Radio Faza 97.1.
1: मुझसे ना मिलेगा फिर कभी ऐसी भी क्या खुशी जो तुमको मिल ही ना सकी क्यों हो खफा जब मानेगी ना कभी गलती सब
2: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy. 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham. NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa. Students Learning and Skills Academy.
2: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
3: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
2: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
3: आय हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
2: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
3: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
4: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
2: Park Foods, जो नाम है मायार का।
5: Zabardast hits.
6: Music never sounded better.
2: Fazan 97.1 FM.
6: I love it.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर.
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Roshid Hire Limited Taxi and Rental Services, looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham. Choose Roshid Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer or vehicle rental, Roshid Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email roshid-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Roshid Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at 077-30-791-412 or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
3: राहिला बहन, बहुत बहुत मुबारक हो। आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए हैं।
4: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में ए स्टार्स और सेट्स में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
3: सलासा ट्यूशन सेंटर?
4: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेस्फोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटनडेल NG2 4LG में है।
3: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
4: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफस्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
3: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
5: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
6: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132 Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mundi, slow-cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: Are you an experienced marketing professional looking for your next challenge? Breeze Connect is recruiting a marketing manager to lead innovative marketing campaigns, grow our brand, and connect with diverse communities across the UK. If you have a passion for digital marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
2: ओए खुशियां मनाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ, पंगड़े पाओ।
3: आज तो बहुत खुश लग रहे हैं, खैर तो है।
2: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
3: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
2: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
3: उनका नाम ही बता दें, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
2: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे, सोने ते स्वागा ये, क्यों हर तरह का वीजा एक्सटेंशंस, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशंस भी कर दे ने।
3: चलें उनका पता भी बता दें, आपको तो जुबानी याद होगा।
2: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
3: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
2: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 01156713677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
4: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 01156713677.

0: जबरदस्त हिट्स,
1: म्यूजिक नेवर साउंडेड बेटर।
2: फजान 97.1 FM,
1: आई लव इट।

0: इट्स कमर्शियल टाइम।
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स। चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्कटॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
4: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: दिस इज अ पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट।
7: द स्टेशन दैट प्लेज फुट टैपिंग म्यूजिक।
8: हजार 97.1 FM।
9: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन।
10: You are listening 97.1 FM।

0: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
1: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हो तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 अल्फर्ड डेंकिन रोड नॉटिंघम या अभी राब्ता करें 07593150669। मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या है यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
4: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
5: अरियाना सुपरमार्केट, 126-132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8-3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू विल लव।
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159-168-231 or 07968-046-444. SLASA Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7, 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
7: This is a public service announcement.
8: Everybody. The station.
9: That plays
10: foot tapping music.
11: Hazar 97.1 FM.
12: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहाँ। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
13: यू आर लिस्टिंग 97.1 FM।

बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सुना ठीक ठाक हो सो, हसने बसने हो सो, के हालत सुना ठीक हो बालो। जी असं संगिया जी, खुश आमदीद जी आया नू ते वेलकम। तुसा अपना प्रोग्राम पटवारी बैठक एक दफा फिर आ गया जनाब। अज दिहाड़ा वा मंगलवार ना, तो साढ़े की सुनने होने हो रेडियो फजा 97.1 FM जड़ा के लाइव जा रहा यूके तू। यूके ने शहर नोटिंगम तू असा लाइव आने हैं जनाब हर मंगलारें दो तू किनी ते शामी 4 बजे जियां ते मंगलारें ना इंतजार मिकी ते फुके आने के इस तरह होना के जिस तरह भुखे बंदे की रोटी ना इंतजार होना, मैं भी इंतजार करना होना कि केड़े लम्मे जनाब अच्छा तो अपने संगियों दोस्तों नाल भैन भरावान नाल असा गप शप लाई है। तो जनाब अज असा एक दफा फिर तुसानी खिदमत च हाजिर हो गए हैं। तो जी बिल्कुल, जो पहली बार तुम साढ़े की सुनने पे हो तो मैं तुम्हें दसना कि मैं तुम अपना मेजबान तुसा भ्रा बासत अली राजा, तुस साढ़े की सुनी सकने हो FM उपर जी कि साड़ी उत्थे ट्यूनिंग है 97.1 और नाल डैब उपर ते नाल तुम साढ़े की सुनी सकने हो ऐप उपर भी। तो जनाबे आली अज ना प्रोग्राम जड़ा है वह बड़ा ही खास और खास है, क्योंकि अज ना जड़ा मौजू है वह भी बड़ा ही खास है। तो अज ना जो मौजू है साड़ा, वह मैं तुम्हें दसना चाहना कि अज ना मौजू खास मैं इस वजह तू आख्या क्योंकि असा हर इंसान इस चीज़ च लाजमी अपने आप है कि गुजारना एक दफ़ा या फिर उसकी एहसास होना। वैसे मैं इस गले नाल भी इस चीज़ ना किसी हद तक जिक्र करी छोड़िया कि अज ना साड़ा मौजू जड़ा वह कैव है। तो साड़ा अज ना मौजू है जनाबे अली एहसास। एहसास जड़ा है ये कह होना कि इंसान की पहचान जिंदा दिल है, तो एहसास भी जिंदा होना चाहिए वा। अज नहीं बैठक ना मौजू क्योंकि इस तरह नहीं है कि ये लफ्ज तो बोलने में एक निका जहा लफ्ज रगना, पर इसनी गहराई पूरी जिंदगी तू बड़ी है और वह लफ्ज है एहसास। तो सवाल यह है कि कद तुसा नाल इस तरह होया कि तुसा बाहरू हसने हो पर अंदरू परेशान हो, तो या कदें तुसा कि इस तरह होया वै कि कुसै बंदे दो लफ्ज ऐसे बाए हो कि तुसा ना दिहाड़ा बहुत चंगा गुजरी गया हो। अपने एक बेरुखी कद कुछ तुसा ने अपने नहीं एक बेरुखी जड़ी है तुसा ना दिल जड़ा वो त्रोड़ी छोड़िया होवे, कद इस तरह होया होवे तुसा नाल। एहसास जड़ा है ना वो एहसास सिर्फ रोने ना नहीं बल्कि एहसास ना है किसे नहीं खुशी विच खुश होने ना, ते दुख की समझने ना जड़ा है वो भी एहसास ही है।

0: जी संगी दोस्तो, एक बार फिर सुनके आने जनाबे अली खुश आमदीद, वेलकम बैक। ते तुसा सुनने पे उत्सुक अपना प्रोग्राम पटवारी बैठक और 97.1 एफएम रेडियो पर। ते मैं सुन मेजबान बासर राजा अगर सोनी साढ़े की ज्वाइन किया, ते मैं आखिया चलो सुन एक दफा फिर दसी छोड़ा। तो जेडे भैन भरा साढ़े की पहले ने सुनने पे, उन्होंने बहुत मेहरबानी, बहुत मुहब्बत, उन्होंने शफकत है जी। तो जी अज जो सा एक खसूसी प्रोग्राम चलना पे, अज ना एक मौजू असं दिता है कि एहसास जड़ा है वह क्या चीज़ होनी, उसकी किस तरह समझी सकने। एक सवाल में पूछा सी कि एहसास हमदर्दी विच क्या फर्क होना, उसने काफ़ी अच्छी गुफ्तगू जड़ी है। संगी दोस्तों ने मैसेज भी असने पे, वो भी उसकी भी असं बाद शामिल कर सा अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाई सकने। तो जे तुम साढ़े की कॉल करना चाहते हो या मैसेज करना चाहते हो, तो उसका नंबर है 01157100971। दोस्तों जिसलै एहसास नहीं गल हो तो यह नहीं हो सकना कि दुनिया ना जरा सारे तू हसास तरीन इंसान होना माड़ी है। अपनी जिंदगी मैं ये लगना कि जिस बंद की वजह तू अज मैं इतना मौजूद हाँ वो मेरी वालदा माजदा है। तो वालदा ना रिश्ता जरा हसास तरीन रिश्ता होना, क्योंकि वालदा ना जरा अपने बच्चे नाल एक रिश्ता होना, एक ताल्लुक होना, एक रब्त होना, एक कनैक्शन होना, वह बहु गूढ़ा तो बहु पीड़ा बेलोस हो। दुनिया ने सारिया रिश्तों तू जरा ना वो वखरा होना, और इस रिश्ते ना जरा है कि वह ना ही है कि मां नहीं मुहब्बत, मां नहीं ममता। तो जिसलै बच्चा बीमार होना ना, तो माऊ नी जी मुहब्बत है ना वो उसलै तकने वाली होनी, मां तड़फनी होनी जिसलै बच्चे की कुछ होगा। चल बच्चा घर तू बहर हो सारी दिहाड़ी नजर जो दरवाजे पर होनी, किड़ा लमड़ा पुत्र वापस ऐसी। जे बच्चे साढ़े यार परदेस आ जाए तो फिर मावरिया फोन पर पुछनिया रहनिया, पुत्र तू ठीक तो थे ना, पर तू रोटी खाधी या कोनी। ते एक सवाल आम लगना पर इसनी गहराई बहु डूंगी है। इस कैन इस ऐसे मादी दौर च मटीरियलिस्टिक जिते चीज़ा सारियाँ लोग के पुछने के कितने पैसे कमाना है, केड़ी गड्डी है तुहाड़े कोल, केड़ी कड़ी है, केड़े कपड़े लाए नी, केड़ा ब्रांड इस्तेमाल करना है। ते उत्थे अम्मा होरी साढ़े कोल पुछने के पुत्र अज रोटी खाधी है या कोई नहीं। संगी काफ़ी अच्छी डिस्कशन होनी पी इस हवाले नाल, लेकिन मजबूर हाँ कमर्शियल ब्रेक ना एक टाइम है, कमर्शियल ब्रेक तो बाद वापस आने हैं सो कॉल।
1: पानी दे बचा दे विच मदद करिए, शावर विच कट समा लगाओ, लीक कर रही टूटियां या टॉयलेट नू तुरंत ठीक करवाओ, लगातार चल रही टूटी दी बजाए पांडे तोन वाले बाउल दी वरतो करो, अते अपने डिशवाशर या वॉशिंग मशीन विच इको मोड दी वरतो करो। पानी अनमोल है, इस नू बचाउन दे लई सानू सारिया नू घट पानी वरतन दी लोड़ है। हर रोज पानी बचाउन दे आसान तरीके लई लेट्स सेव वाटर खोजो या letssavewater.com ते विजिट करो।
2: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.
3: What happened? You look very happy.
4: I have some fantastic news. My wife's got her visa.
3: Congratulations! That was very quick.
4: I was very lucky. I used the local visa experts.
3: Who helped you with the application?
4: AMH solicitors. They were brilliant, friendly, fast, and very responsive. And best of all, they deal with all sorts of visas, extensions, indefinite leave to remain, and citizenship applications.
3: Where is AMH solicitors based?
4: Nottingham Road, New Basford, Nottingham.
3: Brilliant! I will contact them to help my family's visa.
4: Sure. Their number is 01156713600. 77, and they are in Pure Gym building. So parking is available, and they also offer free initial consultation.
5: AMH Solicitors, immigration lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.
6: Attention, property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Fire Safety Solutions, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring you stay compliant with the Regulatory Reform Order 2005 by providing you with a professional risk assessment service. At Elite Care Fire Safety Solutions, we specialise in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Fire Safety Solutions today at...
7: You are listening 97.1 FM.

जी संगी दोस्तों, एक दफा फिर जनाब सो गया, खुश आमदीद, वेलकम बैक जनाब जी आया नू। मैं सुना अपना मेजबान बासत अली राजा, तुसाना प्रात, तुसाना दोस्त, तुसाना सुनने पे सुना अपना प्रोग्राम पोठवारी बैठक। बस नोटिंग तू लाइव आने होने हर मंगलारे दो तू गिनी ते शामी चार बजे जी हाँ। ते साड़ा जड़ा टाइम आ इसकी पटवारी चाने होने पेशी ने टाइम होया वा, मतलब पेशी नी चाह जड़ी है इस टाइम पीने होने लोग दो बजे तू बाद। ते पेशी नी चाह अगर सोनी पीती आजकल ने मॉडर्न दौर च, पेशी नी कॉफी अगर सोनी पीती ते चलो कोई नहीं, दो सिपलाइक नो कॉफी ने नाल रेडियो नो वॉल्यूम थोड़ा जा उच्चा करो ते गप शप लाने असं तुसा नाल। तो जी बिल्कुल, असं हम वापस हसने अपना जरा सा खसूसी एक प्रोग्राम सा चलना पे एहसास, अज ना सा मौजू सी कि एहसास जरा वह कै बुला होनी, एहसास किस बीमारी ना नाम है। हाँ वो तो ऐसा कहना कि दिल ने रोले टीबी शुगर कह कर सा, मैं हसास हाँ ये बीमारी काफ़ी है। जिले हसास हसासीयत ना और इस तरह ने जज्बिया नी गल होनी होवे ते मैं गल करना पैसा दुनिया में जड़ा एक खूबसूरत तरीन रिश्ता होना मां ना रिश्ता होना, ते मां ने वाले नाल जितनी हसास मां होनी अपने बच्चे वास्ते दुनिया ना शायद ही कोई दूसरा रिश्ता होना हो। जिसलै बच्चा बीमार होना तो सारी गल है माऊ नी जान जड़ी है वो अड़ी होनी, बच्चा कुरे बाहर चला गया तो माँ जड़ी है वह परेशान होनी, सारा दिहाड़ दरवाज़ा तखनी रहनी कि केड़े लमाड़ा पुत्र वापस आया सी, जे बच्चा परदेस च आ जाए साढ़े यार तो फोन तखनी रहनी, फोन कर सी माड़ा पुत्र मिकी तो मैं अपने पुत्र नाल हैलो है कर सा, इये गल अगर की सी कि माँ इये पुछनी कि पुत्रा रोटी खाधी है या कोई नहीं, बाकी सारा जान है पुछना कि कै कमाया ही कै लाना है केड़ी गड्डी है तेरे को, लेकिन माँ पुछनी कि पुत्र खादा कै। ये निकी जी गल नहीं है, ये बहुत बड़ी गल है, अगर तुसा इस गल की समझने हो तो तुसा शायद इस गल की महसूस करी सकने हो। माँ जड़ी है ना वो खाली ये नहीं पुछनी होनी कि पुत्र ताड़ी प्लेटा विच कैवे, वो ये पुछनी होनी कि पुत्र तू ठीक है, ताड़ी जिंदगी ठीक तुरनी पी, ते तू की कोई टेंशन कोई परेशानी किसे मसले मसायल च ते तू नहीं है, ते वो एक शेर है ना कि बेनी चोली ना लभी ते राती सारी ठरना रह सें। झोली बज़ाहिर तो एक ऐसा है कि जिसलै बच्चा त्रै चार साल ना होना तो बेनी झोली चू निकली जाना, लेकिन हकीकी जिंदगी च शायद उसकी हमेशा ही बेनी झोली नहीं जरूरत रहनी। तो इसने पर मैं एक कुछ अशार लिखे से आपो, मैं आख्या से कि चलो जदू कर इस टॉपिक पर गल हुई तो मैं तुसां गी सनासा। तो जिसलै अज ना एक साड़ा जहरी गल है, एक बड़ी खसूसी गुफ्तगू है, हसास एहसास इसने पर, ते मैं आख्या चलो तुसा कि यह भी नाल सुनाने कि चुनने आले पहले चुनने कलियां बेनी चोली चू, कैडी जल्दी निकली गई तियां बेनी चोली चू, सत समंदर पार उस पुत्रै बस एक ठोडा खादा सी, सत समंदर पार उस पुत्रै बस एक ठोडा खादा सी, बेड़े विच ही चीज़ा डुली गई बेनी चोली चू, ते औखे वेले आलियां तुपां माड़ी राह विच आईया नी, अगै वधी जिसलै छावां आईया बेनी चोली चू, ते इत्थे तक ते सारियां मतां सच ही साबत होईयां ने, अखां नूटी जो अधराती सुनियां बेनी चोली चू। शेर बड़ा खास है कि आले तक ते बासत करना बुआ कलियां टपिया नी, आले तक ते बासत करना बुआ कलियां टपिया नी, माड़े कदमां नाल दुआवां टुरियां बेनी चोली चू। ते मैं तां ही आख्या बेनी चोली जड़ी है वह एक पूरा सब्जेक्ट है, वो सिर्फ बचपन नहीं, एक वो ऐसी जगह नहीं जित्थे तुसां परवरिश पाई, जित्थे तुसां की सर्दी गर्मी तुसां नहीं भुख उत्थे उन्हां सारियां चीज़ां ने बंदोबस्त होने से, बल्कि बेनी चोली एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अगर तुसां फील करो तो सारी जिंदगी इंसान की इस चीज़ की जरूरत होनी है। हूँ
ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਗੀਤ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇਸ ਟੋਪਿਕ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣੇ ਆ। ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਿੰਗਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨਾਲ ਇਹ ਗੀਤ ਹੈ।

जी संगीत दोस्तों एक दफा फिर सुन के आने हैं जनाब खुश आमदीद। जी ते मैं सुना अपना मेजबान सुना भ्रा बस्तरी राजा सुना एक दफा फिर खुश आमदीद वेलकम बैक आखना जी कि सुना तुखने भी उत्साह सुनने भी उत्साह अपना प्रोग्राम पटवारी बैठक जरा कि लाइव जा रहा नॉटिंगम यूके तो रेडियो फजा 97.1 FM पर तो जे हूँ सौ साढ़े की ज्वाइन किया तो मैं सुना कि दसा जनाब कि साड़ा जड़ा प्रोग्राम है वो FM पर ट्यून करी सकने हो 97.1 FM ते नाल डैब पर भी इसमें साड़े की सुनी सकने हो ते नाल जे सुन कुल मोबाइल इच एप्लीकेशन है तो उसने चुई सुनी सकने हो प्ले स्टोर बजाई ते उत्थे तुसां फजा रेडियो लिखो ते तुसां की फजा रेडियो ना जड़ा है वो मोनोग्राम जड़ा के पर्पल कलर इच है और उसने पर गोल्डन माइक है वो तुसां की नज़र आ जासी। ते जी संगी दोस्तों आज ने जड़ा साड़ा टॉपिक है वो बड़ा एक खास मौजू सी एहसास क्या चीज़ होनी ते उस हवाले नाल कुछ सवालात जड़े सन वो ये सन कि कदें तुसा नाल इस रहा होया होया कि तुसा बाहरों असने हो पर अंदरों तुसा परेशान हो जिंदगी कदें इस तरह तुसा होया हो या फिर कदें बंदे की यह भी होना कि कुसै बंदे ने आखिया हुई दो गल्लां दो लफ्ज़ कुसै तुसा नाल इस तरह ने दसे हो तुसा पूरी दिहाड़ तुसानी जड़ी है वो बहुत चंगी जिसके आने ना सूत्री गुजरी होवे तो कई बार इस तरह भी होना कि किसी बंदे दियाँ दो गल्लां या ईवन एक गल भी जड़ी है वह भी इतनी बंदे की चुभी जानी कि बंदे ना दिल भी त्रुटी जाना। तो एहसास ने जड़े रिश्ते होने जारी गल है उसने च असा माओ प्यो की गल की भैन भ्रा की गल की तो हूँ मैं एक बड़ा खास रिश्ता है जिसने गल कर सा मैं इन रिश्तों की अपने दिल ने बहुत करीब समझना वा तो यकीन तुसा भी इन रिश्तों की एक बड़ी खास अहमियत जड़ी है तुसा देने उसो क्योंकि एहसास यही है कि तुसा किसी ना ख्याल करने हो तो कोई तुसा ना ख्याल करना ते वो इतने सच्चे दिलै नाल होवे कि बंदा कई दफ़ा अपना आप भुली जाना उस दूए बंदे ना ख्याल करने ते हुण मैं भैणा भ्रा तो बाद ये गल करसा कि सच्चा दोस्त जड़ा ना वो इंसान की जिंदगी कितना जरूरी होना तो जे तुसा ना कोई दोस्त नहीं तो फिर तुसा हकीकी मानिया में गरीब हो ये गल मैं ना आखना एक कौल है हज़रत अली करमुल्ला वच होना ते जिसलै असा निक्के सा तो यह गल सुनने होने सा या पढ़ने होने सा कि एक कौल के दुनिया में गरीब हो है जिसना कोई दोस्त नहीं है तो उस टाइम यह गल एक मामूली जी लगनी सी क्योंकि असा कि उस टाइम ही यह लगना सी कि शायद पैसे जड़े वो बंदे कोल होण तो बंदा अमीर होना है लेकिन अगर बंदे कोल मुखलस दोस्त होवे तो मैं ना आना होन भी अगर एक विचों कोल है तो वह भी कई दफा लखां पर भारी होना ते सच्चा दोस्त जड़ा ना वो नहीं होना जड़ा कि खुशी ने मौके पर तुसा नाल होवे सच्चा दोस्त वो होना जड़ा कि हर गम हर परेशानी में वो तुसा ने नाल होना ते सच्चा दोस्त जड़ा वो कहने के ऐलान नहीं करना होना कि मैं तुसा नाल बड़िया निक्कियां करना पिया बल्कि वो खामोशी नाल तुसा नाल टुरना रहना तुसा की खुद भी बात कात इस चीज़ ना एहसास नहीं होना कि यार केड़ा बंदा मेरे नाल कितनी मुखलसी नाल टुरना पिया लेकिन एहसास होना एक टाइम तो बाद जिसलै थोड़ियां जिहा दूरियां पैदा हो जानियां तो सच्चा दोस्त वो नहीं होना जड़ा खाली तुसा नहीं मुँह पर इज्जत करना रवै ओ हो बहुत चंगा बंदा जी बहुत बड़ा ही ग्रेट आदमी है ये वो तुसा नहीं गैर मौजूदगी बिच जिस किसी महफल तुसा ना जिक्र होवे अगर उत्थे भी तुसा ना वो पर्दा रखना तुसा नहीं गल रखना तो यकीनन वो तुसा ना सच्चा दोस्त है। अच्छा वैसे एक बड़ी मजे की गल माड़े जाने चाहिए कई दफा होना कि असा किसी इंसान की अपनी गल बाने तो फिर उसकी समझ लगनी लेकिन कुछ दोस्त कुछ रिश्ते ऐसे भी होने जिन्हें नाल तुसा कोई गल नहीं बाने लेकिन उन्होंने फिर भी समझ आ जानी वो असल एहसास वाले रिश्ते होने। अजकल सोशल मीडिया दियां दोस्तियां भी होनियां कि जिथे कई दफा बंदे की एक तस्वीर पर एक वीडियो पर उसकी 500-500 कह सूए दिल आले जड़े होने लाइक्स ते रिएक्ट्स होने वो बंदे कोल होने लेकिन जिसलै बंदे पर औखा वेला आसना ते 500 भी छोड़ी ते 5 बंदे भी उसने नाल निकलते होने बल्कि 5 भी छोड़ो एक बंदा भी कई बार उसने नाल निकलता होना

जी संगीत दोस्तों, मैं सोना अपना मेजबान सोना भरा बस्तरी राजा एक बार फिर तुसानी खिदमत च वापस आ गए जनाब। पटवारी बैठक प्रोग्राम सा सुनने पे रेडियो फजा 97.1 FM अपरू। ते अज ना जड़ा साड़ा प्रोग्राम है उस ना तकरीबन 1 घंटा 11 मिनट गुजरी चुके हैं। बड़े खूबसूरत माइये टप्पे जड़े के पटवारी नहीं एक पटवार नहीं पंजाब नहीं साड़ी कहने के सकाफत है, साड़ा विरसा है, साड़ी ये विरास है। असा बड़े प्राउडली असा इन चीज़ों की प्रेजेंट करने होने कि यार इन्हों गलों नाल ही साड़ी जड़ी पटवार नहीं सकाफत है उसने वाले नाल लोग साड़े की पहचानने न। ते वापस हसने हूँ आज जो सा टॉपिक है उसने पर वापस हसने आज सा मौजू है वह हजूरे वाला यही है कि परदेस ऐसी के एहसास जड़ा वह कै चीज़ होनी। तो परदेस ना तो निकली गया क्योंकि परदेसियां ना भी एक जहरी गल है बड़े एहसास होने तो घर तो दूर होने तो उन्होंने इस एहसास नाल कह तलक है। सौंग बचाने तो पहले गल करने पे दोस्ती ने वाले नाल ते दोस्ती कैसा बेलोस रिश्ता है। बड़े खुश नसीब लोग होने जिन्हों को कोई कीमती दोस्त यार संगी मौजूद हों ते बिल्कुल और मैं भी उन्हां चों इक खुश नसीब हाँ। तो बहरहाल जनाब परदेसी जड़ा है ना वो भी एक ऐसे कर बिचो गुजरना जिसलै वो अपने भैन भरा अपने घर बार सब कुछ छोड़ी ते वो जिसलै घरों निकलना तो उसनिया भी कुछ ऐसिया गल्ला होनिया जड़ियाँ कि शायद उसनी जिंदगी विच सिर्फ वो ही समझी सकना उन्हें उसने सच्चे जज्बे की।

जी जनाब, सफरां तो थकिया, मैं नहीं जगाया। जी वेलकम बैक जी, एक दफा फिर सुन के आने खुश आमदीद जी आया नु सुने अपने प्रोग्राम पटवारी बैठक च। मैं सुना मेजबान बासत अली राजा। संगी दोस्तों, तुसां जे हुण साडे के ज्वाइन कीता तां तुसां दी बहुत मेहरबानी, तुसां बहुत सारा भला जनाब कि मैं तुसां बहुत मशहूर हाँ कि तुसां ट्यून कीता 97.1 FM रेडियो फजा जिहड़ा कि नोटिंगम तू लाइव जा रहा। और असां कि अगर तुसां सुनना चाहने हो तां तुसां साडे की 97.1 FM पर भी सुनी सकने हो, उस तों इलावा तुसां साडे की डैब पर सुनी सकने हो, ते नाल साडी रेडियो फजा दी ऐप है उसने पर भी तुसां साडे की सुनी सकने हो। जिहड़े संगी दोस्त भैन भरा साढ़े की रेगुलर सुनने न, उन्हां की पता है कि असां जिहड़ा प्रोग्राम है वह हर मंगलारें दो तो गिनते हैं चार बजे तक होना, तकरीबन प्रोग्राम ना डेढ़ घंटा एक घंटा बाई मिनट गुजरी चुके हैं। हुण प्रोग्राम जिहड़ा वह अपने आस्ते आस्ते एंड आले पासे जाना पिया, लेकिन जिहड़ा अज ना मौजू है वह साढ़ा वह बड़ा खास और दिलचस्प मौजू है, और उसना तलक हर इंसान नाल है। हर वह बंदा जिहड़ा कि सा के ना पिया हाल जी, हाँ उसकी एहसास नहीं किसी हद तक कहने तारीफ ना, और एहसास नहीं जिहड़ी कदर है उसना उसकी अंदाज़ा होना है कि बंदे की एहसास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, या कुसे की माड़ा एहसास थिया या नहीं थिया। ये गल्लां अक्सर असं सुनने रहने हैं कि यार फलाना बंदा बहुत हसास है, तो कई बंदे अपने आप है कि भी हसास समझने, बल्कि हर बंदा ही अपने आप है कि हसास ही समझना, लेकिन असल गल ये है कि बंदे ने मामलात जड़े वह दसने के वह वाकई कितना ज़्यादा हसास है। तो जिथे एहसास नहीं गल अच्छा है, उत्थे बे इसी नहीं गल भी होनी कि बंदा जड़ा वो बेहिस उसने आपोजिट जिसकी आने ना के अगर एक पास है हसास है तो दूए पास है बेहिस भी मुआशरा हो जाना। कई बार बंदे भी हो जाने, अच्छा हूँ बेहिसना यह मतलब नहीं कि बंदा असना नहीं या बंदा रोना नहीं, बंदा सारे नॉर्मल बंदे यार कम शम भी करना रहना, लेकिन कई बारी इस तरह होना कि असा नी जिंदगी विच असा तखने हाँ किसी अपने मुसीबत किसी बंदे की असा तखने हाँ, तो असा जाने बुझी तो अखा फेरी किन्ने असा आने कि इस शायद असा इसने कुछ ना करी सकने, राह बदलाई तो असा दुए पास तखने ही पैने। तो वह जरा असं राह बदलाई तो दुए पास तकने ना, असल माड़े साहबे च बेसी उ कि कुछ चाहने कुछ करी भी सकने असं, लेकिन इसने बावजूद भी असं उस बंदे कुछ ना करने। देखो जिसलै किसी बंदे की किसी मजबूर की लोड़ होवे मदद नहीं, तो जिसलै किसी बच्चे की लोड़ होवे तवज्जो नहीं, किसी मजदूर नाल ना इंसाफी होनी होवे या किसी महफली च किसी नाल मजाक बनना होवे, तो उसने च अगर असानी जड़ी खामोशी है साड़ा इग्नोर करना है, वह भी बेहिसी ने खाते विच आना है।

ते इक कॉलर साढ़ी कॉल करने पे सुनो नी कॉल पिक करने हैं जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो।

0: जी संगीत दोस्तों, एक दफा फिर सुन के जनाब खुश आमदीद आने सुना अपना प्रोग्राम पटवारी बैठक सुनने पे रेडियो फजा 97.1 एफएम पर। तो टाइम जाया कीजिए बगैर एक साड़ी की कॉल असनी भी जरा पहले कॉलर की सुनने हैं कि वो क्या बाने साड़े नाल। जी जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो।
1: Yeah, so that was that one, and obviously this calling and what I've been requesting.

जी संगीत, मैं सुना अपना मेजबान सुना अपना बस्तरी राजा ते सुना सुनने पे सुना अपना प्रोग्राम पुठवारी बैठक। एक छोटा जा कमर्शियल ब्रेक सी जिसने वजह तो सा गए सा तो उस बाद हुन वापसी हुई है साड़ी ते जड़ा साड़ा प्रोग्राम है दो तो चार तक सुनने होने प्रोग्राम ने आखिरी 30 मिनट्स जड़े ने रही गए तकरीबन ते कॉलर भी आए सर ना लेकिन शायद उन्हें कुछ और की कॉल करनी सी तो उन्होंने आख्या चलो जरा पुठवारी बैठक आए नलका पशमा लाई की नहीं है मैं आख्या चलो कोई मसला नहीं जनाब असा हर किसी की वेलकम करने ते अगर बंदा गल पुठवारी करना हो या पंजाबी करना हो ते कोई मसला नहीं हो तो मोर देन वेलकम। तो संगीत दोस्तों आज ना प्रोग्राम जड़ा वो एक एहसास पर असा कीता सी कि एहसास जड़ा वो कै शैव है हूँ प्रोग्राम जिला ब्रेक होया तो ब्रेक तो जाने तो पहले मैं गल करना पैसा कि बेहिसी जड़ी है वो कैसकी आखने क्योंकि जहरी गल है जिते एहसास नहीं असं गल करने तो दुए पास साढ़े की बेहिसी नज़र आनी है कि जिसल असं अखा बंद करी कि अपन असं की पता होना भाई ये काम जड़ा वो साढ़े की करना चाहिए साढ़े अंदरों एक आवाज़ असनी होनी जमीर नहीं आवाज़ जिसकी आने लेकिन असं उसने बावजूद असं उस बंद गल ना सुनने उस बंद गल ना बुझने असं अपन मजबूरिया के सामने रखी तहत आखने कि ना यार मैं बहुत मजबूर स हालांकि अंदरों साढ़े की पता होना कि असं इसनी मदद करी सकने सौखे वेले

असां केईं वारी एह् आखी ते निकली जाने आं कि असां की कह लगा ऐ, मिकी कह लगा इस गल्लै नाल, पर इक सवाल एह् पैदा होना कि जे हर बंदा इ'यै आखै कि मिकी कह लगा ऐ, फिर माशरे दी फिक्र जेह्ड़ी ऐ ओह् किस करनी, ते हर मसला असां हल बेशक ना करी सकने, हर बंदे दी मदद भी मुमकिन नहीं होनी, पर जित्थै मुमकिन होवे उत्थै बेइज्जती की मजबूरी ना ना देना मी ते ठीक गल नहीं ना कहने उस। देखो जिंदगी च केईं दफ़ा इस तरह होना कि एक नरम लहजा, एक नरम लफ्स, एक छोटी जी मदद या किसी गलत काम के खिलाफ आवाज़ चाहना, यह भी बड़ा अहम हो जाना। तो यह जिंदगी ने मामला जड़े ने वो इंसान ने इस तरह ता ही चलने कि अगर इंसान खाली अपनी जात ना सोचे बल्कि जड़े साढ़े सज्जे खब्बे सराउंडिंग्स जड़े साढ़े बंदे न बंदा उन्होंने बारे च भी सोचे कि ओह कह सोचने उन्होंने किस तरह करना चाहिए ना, ते कॉल एक साढ़े की असनी भी असं दोबारा ट्राई करने हैं, कॉल पिक करने नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाँ कॉल आई लेकिन इसके बावजूद असं कोई शायद कोई बंदा किसी और नंबर पर कॉल करना चाहना, लेकिन वो बार बार साढ़ा नंबर मिलाई छोड़ना, तो चलो कोई मसला नहीं जनाब, असं गल करने पे सा बेसी है, पर के असा नहीं कई दफ़ा होना कि एक नरम जड़ा है लफ्स असं किसी से अदा करने हैं वो किसी से बड़ी अहमियत रखना, कई दफ़ा होना एक छोटी जी मदद असं किसी नहीं करने हैं तो वो भी बड़ी अहमियत रखनी, तो कई दफ़ा इस तरह होना कि किसी गलत काम के खिलाफ जी तुम एक बार आवाज़ बुलंद करने हो वो भी बड़ा अहम किरदार अदा करनी, ते ता ही आने खामोशी जड़ी है वह भी कई दफ़ा जुर्म बनी जानी, बेइज्जती ते खामोशी इन्हां ना आपस में तालमेल है किसी न किसी जगह पर। तो संगी तुस हूँ इतना सवाल यह है कि किसी तुसा नाल कोई ऐसी भलाई की हो, कोई ऐसा एहसान कुसै कीता हो, कोई ऐसी मेहरबानी किसी की हो जी तुसा की याद हो, अगर अज प्रोग्राम में बना चाहने हो तो जरूर तुम जनाब आई सकने हो, मैसेज की सूरत भी पाई सकने हो, तो दूआ जे किसी ने एहसास तुसा नी जिंदगी की बदलिया हो तो तुसा उस चीज़ की भी साढ़े नाल डिस्कस करी सकने हो। तो एक और गल है कि जे कुसै ने बेइज्जती तुसा ने दिल दुखाया हो ते उसकी तुसा माफ भी करी सकने हो। अच्छा हूँ मैं इतना इस वजह तू यही आख्या कि अगर तुम किसी दिल दुखाया तो तुसा साढ़े नाल अच्छी दबाओ असं फिर पूरी दुनिया नाल बाई है, क्योंकि मैं आपो जाती तौर पर यह समझना वा कि अगर इंसान ने ऐबा पर अल्लाह ने जात पर्दा पाया वा तो असं भी कोशिश करिए बस उसकी एहसास दिलाई छोड़ी है जड़ा कि अपने लफ्जा नाल और एक अपने गुड गेस्चर नाल बंदा उसकी दे सकना, ते लेकिन बाकी इस तरह उसना ऐलान ना करिए। तो बाकी है कि जे तुसां कदे कुसै नी मदद कीती होवे ओह वाकया भी अज तुसां की याद है, तुसां एक अच्छे पैगाम ने तौर पर किसी की देना चाहने हो तो जरूर तुसां जनाब देई सकने हो। अच्छा जी, अज मैसेज शामिल करने हैं साढ़े एक लिसनर है मुदस्सर जट नॉटिंगहम तो, उन्होंने एक मैसेज है वो आने कि साढ़े को हमेशा दौलत नहीं होनी, हमेशा वक्त नहीं होना, पर कई बारी साढ़े कोल एक लफ्ज़ जरूर होना जड़ा किसी ने दिल है कि सुकून दे। बड़ी सोहनी गल की ने कि वाकई गल इस तरह है कि कई दफ़ा साढ़े कोल दौलत भी नहीं होनी, टाइम भी नहीं होना, लेकिन असं किसी की तसली ना एक बोल बोलने हाँ तो अगला बंदा जड़ा वो खुश हो जाना, वो आना यार क्या बात है यार माड़ा इन्ना माण रखिया। काफ़ी सारिया संजीदा गप्पां होनियां पियां, ते मैं कई दफ़ा ये फील करना कि जितना ज़्यादा मैं आपो संजीदा वहाँ तो मैं तुसा की भी उस ही संजीदगी विच किन्नी तां टुरना रहना, उसनी वजह तुसी नाल थोड़ी इंटरटेनमेंट जड़ी है वह जरूरी होनी। ते ए सुनो एक सराइकी गीत है जनाब, चलड़े चलड़े वाल,
ਤੇ ਤੱਕਣੇ ਜ਼ਰਾ ਛੱਲੇ ਛੱਲੇ ਵਾਲ ਸੰਗੀਤ ਕਿਤਨਾ ਇੱਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਗਰ ਸੰਗੀਤ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਚਾਰਟ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਕਰੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਸੁਣੋ ਜਨਾਬ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੀਤ ਛੱਲੇ ਛੱਲੇ ਵਾਲ।

जी हाँ, जिंदगी को रोकने की कोशिश में कभी कभी क्या होता है कि हम इतनी तगोदो करते हैं कि हम जिंदगी की जो असल खूबसूरती होती है, असल रहनाई होती है, उसको हम इंजॉय नहीं कर पाते। जैसे कि हमने कहा कि आज का दिन कितना खूबसूरत था और आज के दिन हमने कायनात के दो रंग देखे, एक बादलों और बारिश में डूबा हुआ और दूसरा सूरज की गर्मी, सूरज की हिद्दत और सूरज की रोशनी, और फिर उसके बाद हम शाम का अंधेरा देखेंगे और फिर जिंदगी एक दिन पुरानी हो जाएगी। सो इंसान आज और कल की आस में जीता है और जीता ही चला जाता है। हर दिन एक नई उम्मीद के साथ हम अपने बिस्तरों को छोड़ते हैं, अपने बेडरूम्स के कर्टन्स पीछे करते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं कि हर दिन हमारी जिंदगी के सालों में से कम होता जा रहा है। लेकिन अल्लाह पाक ने अगर ये आस और उम्मीद का दामन हमें ना थमाया होता तो यकीन कीजिए कि हम बस इसी इंतजार में बेसकून से होते और हमारे पास कोई ख्वाहिश, कोई उम्मीद, कोई तमन्ना ना होती। आप सबको खुशामदीद कहते हुए शामिल करती हूँ आज के इस धुन और दास्तां में। एक प्यारा सा गीत आपको सुनाना चाह रही हूँ जो कि है नाहिद अख्तर की आवाज में। बहुत ही प्यारा सा गीत, अपने वक्त का मशहूर गीत था। और ये वो गीत थे जो कि पीटीवी पर लगा करते थे और लोग बड़े आराम से इनको बैठकर सुनते, एंजॉय करते। अब इन्हीं गीतों को रीमिक्स कर दिया गया है, एक नया ढंग, एक नया ठप देकर हमारे साथ इन गीतों को पुरानी यादों के साथ जोड़ दिया गया है।

और हम चुप ही रहे। कितना खूबसूरत गीत और नए अंदाज में ये गीत और भी ज्यादा खूबसूरत लगा। समीन कहते हैं कि असल मोहब्बत इंसान को अपने किरदार से होनी चाहिए, और जो भी शख्स किरदार से मोहब्बत करते हैं वो किरदार उनका असासा होते हैं। जो किरदार से मोहब्बत नहीं करते इनके किरदार मोहब्बत के लायक ही नहीं होते। और जिस जिंदगी में कोई काम बाकी न रहे इस जिंदगी में लुत्फ खत्म हो जाते हैं। हम हर सुबह अपने जहन पर बहुत सारे कामों का बोझ लेके उठते हैं और हमें पता होता है कि आज के दिन हमने बहुत सारे काम करने हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारी जिन्हें हमने पूरा करना है, और उन्हें पूरा करने की दुआ के साथ साथ हमारी कोशिश भी होती है। और यही वजह होती है कि एक घर का जो मालिक, जो बाप होता है, भाई होता है, बेटा होता है, अगर उसके घर की जिम्मेदारियां उसके कंधों पर हैं तो उसे खाने पीने की इतनी जरूरत नहीं होती, इतनी होश नहीं होती जितना कि उसे अपनी उन जिम्मेदारियों के पूरा होने की एक परेशानी लगी रहती है, और वो इसी परेशानी को लेकर अपने घरों से निकलता है। फिर उसे याद नहीं रहता कि घर के पीछे जो घर में रहने वाले लोग हैं उनके पास क्या उलझन है, उन्हें किस तरह की राहत आज के दिन चाहिए। बस वो तो अपनी धुन में घर से निकलते ही ढेर सारे कामों में अपने आप को उलझा के अपने आप को भी भूल जाता है। लेकिन ये वो शख्स होता है जिसके साथ हमें बहुत सारी शिकायतें होती हैं। आपने भी कई बार लोगों को सुना होगा कि बाप से बहुत सारी शिकायतें होती हैं। जी हाँ, ऐसी बहुत सारी शिकायतों को डिस्कस करेंगे। आप भी कुछ कहना चाहें तो जरूर शामिल हों। 0115710097 हमारा नंबर है। इतना ना मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बात। और जी हाँ, लाइव ब्रॉडकास्ट है और आप सुन रहे हैं इसे FM 97 से। एक बार फिर से कहेंगे कि जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है मुझे, जिंदगी जब भी तेरी बस में लाती है मुझे, ये जमीन चांद से बेहतर नजर आती है मुझे।

जाने बहारा, रश के चमन, बहुत ही प्यारा सा गीत। और मिर्ज़ा भाई आपका तहे दिल से शुक्रिया, शामिल हुए आप। कुछ टिप्स थी, कुछ मेके और ससुराल को याद करवाया। वो मेका भी छूट गया, वो ससुराल भी छूट गया, है ना। कभी कभी क्या होता है कि इंसान इतना ज़िंदगी में अमीर होता है, इतना रिच होता है कि उसके मेके में भी एक बहार होती है और ससुराल में भी। हर तरफ रौनके, मेले और बेशुमार लोग। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि मेके की गलियों की तरफ मुड़ के देखें तो उदासी और वीरानी, और ससुराल की तरफ कदम बढ़ाएं तो ससुराल की तरफ भी यही कुछ। कहते ना कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। इतने ढेर सारे नाम आपने याद करवाए, यकीनन वो लोग कहीं ना कहीं हमें सुन रहे होंगे और मसरूफियत में कहीं ना कहीं उन्होंने अपने आप को गुम कर लिया। बस इस टेलीफोन ने हम सबको एक दूसरे से जुदा कर दिया। इस फोन से फासला हमने कितना रखना और कितनी दोस्ती, ये तो हम सब बाशऊर लोग हैं। हम सबको अपने लिए कुछ वक्त का तायुन करना चाहिए कि कितना वक्त हमने फ़ोन को देना है, कितना फ़ोन हमने अपने आप को, कितना अपने दोस्तों को, अपने रिश्तों को, और कितना नींद में, कितना ताज़ा हवा में, कितना पानी पीने में, और कितना फ्रूट्स खाने में, और कितना रब्बे कायनात की इबादत करने के लिए।

0: जी, ये प्यारा सा गीत अली डरबी से सुन रहे, हमें बहुत शुक्रिया अली, आप हमेशा शामिल होते हैं, टेक्स्ट मैसेज के जरिए सुनते हैं, टेक्स्ट मैसेज के जरिए अपना पैगाम भेजते हैं। और शकील, आप भी सुन रहे हमें, आपने थोड़ी सी शायरी भेजी और बहुत सारी चीजें आपने शेयर की।
1: मैं हर वेले हंसदा रहवां
0: जी, बहुत शुक्रिया शकील आपका भी, और यकीनन आपकी शायरी को भी शामिल करेंगे। कोई गीत सुनना चाहते हैं तो वो भी बताएं। अली, आपका शुक्रिया, टैक्सी करते हुए आप हमारा प्रोग्राम सुनते हैं और हर हफ्ते हमारे प्रोग्राम में शामिल भी होते हैं। साइमा बुलेटिन से आप सुन रही हैं, मिसिस खान आप सुन रही हैं बुलेटिन से। मिसिस खान काफी अरसे से बीमार हैं और वो हमेशा कहती हैं कि ये सब मेरे लिए दुआ किया करें, और उनका कहना है कि मेरे कमरे में हमेशा रेडियो जो है वो ऑन रहता है और हम सबके प्रोग्राम सुनती रहती हैं। बहुत शुक्रिया मिसिस खान, और बहुत सारी हमारी दुआएं जो हैं वो भी आपके लिए हैं, उन तमाम लिसनर के लिए जो किसी भी वजह से परेशान हैं, बीमार हैं, अकेले हैं। और ये प्यारा सा गीत जी मेरी जानिब से आप सबके लिए,

और ये प्यारा सा गीत मिसी साना आपको बहुत अच्छा लगा। ये न्यू वर्जन है जी नए गीत आई 2026 के, न्यू पंजाबी जी हाँ सॉन्ग्स हैं ये, सजना वे सजना जी हाँ। इसका टाइटल जो है वो ये है सजना वे सजना और फीमेल वर्जन, और इस गीत को कहते हैं कि हार्ट टचिंग सॉन्ग्स। बहुत शुक्रिया अली, आपको अच्छा लगा गीत। और शकील ने भी कहा जी कि पहली बार इस गीत को सुना, वो गीत ही क्या जिसको पहले सुना हो, है ना। गीत तो वो जिसको पहली बार सुने और दिल को छू जाए। कल्प हुसैन बड़ाइज कहते हैं कि जो खतरात को लब्बैक नहीं कहते ना वो बुलंद होते हैं और ना बुलंद होने की कोशिश करते हैं। उनका कहना है कि खतरात में कूदना नहीं चाहिए, खतरात के साथ दस बदस्त लड़ाई करनी चाहिए। जंग खतरात को शिकस्त देने से कामयाबी मिलती है। जो खतरात से किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं वो पहाड़ों और जंगलों में जिंदगी गुजारते हैं। जो खतरात को लब्बैक कहते हैं वो जिंदगी के हर मैदान को मैदाने करबला समझते हैं। और जो लोग खामोशी से सुन रहे हैं उन सबको भी शामिल करते हैं, और जिन लोगों ने अपने अपने मैसेजेस भेजे उनका शुक्रिया। अगला गीत शकील, आपने सुनना चाहा इस गीत को, बहुत ही प्यारा सा गीत, और इस फिल्म को देखा, बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत प्यारी सी, और यकीनन आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी। गीत था तू जो नहीं तो कुछ भी नहीं।

जी क्या कहने इस गीत के कि मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तो कहाँ खो गई है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये माना कि महफिल जमा है हंसी है और जिंदगी खुश्क है वीरान है अफसुरदा है, जिंदगी खुश्क है वीरान है अफसुरदा है, एक मजदूर के उलझे हुए बालों की तरह। और जिंदगी खुश्क है वीरान है अफसुरदा है, ताक में रखे हुए चंद रसालों की तरह।

और कितने लोग हैं जिनके पास आज भी वो पुराने खत मौजूद हैं। यकीनन हम में से बहुत सारे होंगे जिन्होंने उन तहरीरों को आज भी बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से कहीं छुपा कर रखा होगा, जिनमें ख़त उनके वालदैन के भी होंगे और उनके बहन भाइयों के, उनके दोस्तों के, किसी लव वन के, कहीं ना कहीं वो ख़त आज भी हमारी यादों में, हमारी अलमारियों में आज भी महफूज हैं। और हम उस खूबसूरत दौर के लोग हैं जिनके पास पेंसिलें, कलम, पेन जिनको कहते हैं वो, और पैड हुआ करते थे। और एक ख़त के लिए कई दफ़ा महीनों इंतज़ार करना पड़ता था, 10 दिन इंतज़ार करना पड़ता था, उस ख़त पर टिकट लगते थे उसके लिफाफे पर। कभी शाम ढले तो, और फिर ख़त पता नहीं किन किन हाथों से गुजरता हुआ उस गांव, उस मोहल्ले, उस शहर, उस मुल्क में आखिर को जा पहुंचता था। और ख़त एक ऐसी चीज़ थी कि जिसे लोग पढ़ते थे, फिर रख देते थे, फिर कुछ दिनों बाद निकाल के पढ़ते थे, फिर रख देते थे। क्योंकि सालों के बाद उन तहरीरों को पढ़ के इंसान के जज्बात, एहसास वही हो जाया करते थे। यकीनन हम जिस दौर के लोग हैं, उस दौर को याद करके हम लोग अफसरदा होते हैं, हमें वो यादें तंग करती हैं, सताती हैं, क्योंकि इंसान ने जो भी मंजर अपनी आंखों से देखा होता है, जिन लोगों में उठा बैठा होता है, जिस माहौल को, जिस मौसम को उसने देखा होता है, जो खुशबू उसने कभी कहीं महसूस की होती है, वो जब भी कहीं खुशबू कहीं और जगह पर महसूस करता है, उसे वही मंजर, वही जगह, वो सब कुछ याद आता है। सो जी, क्या कि हम खतों के दौर के लोग हैं, आज भी ढेर सारे खत हमारे पास मौजूद हैं। मैं कभी कभी उन खतों को निकालती हूँ, पढ़ती हूँ और हैरान होती हूँ कि उस वक्त कितना टाइम होता था कि इतनी लंबी लंबी 3-3-4 सफ़ों की तहरीरें लिखना, और उसमें पूरे वाक़यात, इर्द गिर्द होने वाली सभी चीज़ों को लिखा जाता था। और मेरे प्यारे वालिद मुहतरम, जी हाँ, उनके बहुत सारे ख़त मेरे पास हैं। उनकी एक आदत थी कि उन्हें पता था कि मुझे लिखने पढ़ने का बहुत शौक़ है, वो अखबार में जो भी अच्छी तहरीर देखते उसे काट के वहाँ से ख़त में डाल के मुझे भेज दिया करते थे। क्या कहते हैं कि यादों का जब दफ्तर खोला, बस यादें ही यादें थी, और खूबसूरत यादें।

के यहाँ से फिर न जाना, कितनी खूबसूरत इल्तिजा है, है ना। कभी शाम ढले तो मेरे दिल में आ जाना, और जब चांद खिले तो मेरे दिल में आ जाना। एक प्यारा सा खूबसूरत सा गीत, और मैं हूँ फाखरा मिर्ज़ा, मोहब्बतों से गुंधे और यकीन से बंधे रिश्तों के साथ आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। सो जी, बात करते हैं मुसर्रत नज़ीर साहिबा, जो कि लेजेंडरी अदाकारा गुलोकारा, उन्होंने फिल्म की दुनिया में बहुत काम किया, और एक खूबसूरत चेहरा, बहुत ही अच्छी पर्सनैलिटी। बहुत अरसा कनाडा में रही, अमेरिका में रही, उसके बाद बहुत सालों बाद अपने वतन जब वापस आई, और एक नए रंग, नए ठंग, नए ठप के साथ, और फिर उन्होंने आकर एक वेडिंग सॉन्ग्स की कलेक्शन बनाई, जो कि इतनी मकबूल हुई, इतनी मकबूल हुई कि 85 की जितने भी शादियां थी, 85 उसके बाद की, उन सब शादी के जो शादियां थी उनमें बैकग्राउंड में, और फिर उसके बाद शादियों में गाए जाने वाले वो टप्पे, वो सभी मुसर्रत नज़ीर की आवाज़ में गाए जाते थे। बहुत पॉपुलर हुई, खूबसूरत चेहरा, खूबसूरत अंदाज मुसर्रत नज़ीर, जिनकी पिछले दिनों में तस्वीर देखी, कुछ ओल्ड सी हुई हैं, नए नक्श वैसे ही हैं, लेकिन पाकिस्तान की एक पहचान मुसर्रत नज़ीर, अपने वक्त की एक शानदार अदाकारा और दिल को छू लेने वाली गुलोकारा, जिनके नगमे आज भी सुनने वालों के दिलों में ताज़ा हैं। उन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती, सादगी और मधुर आवाज़ से जो मुकाम हासिल किया, वो आज भी बेमिसाल है। समी कहते हैं कि मुसर्रत नज़ीर अब कनाडा में अपने बेटे के साथ रिहायश पजीर हैं, एक बासलाहियत फिल्म मेकर, और ज़िंदगी के इस नए मरहले में भी उनकी शायस्तगी और वकार वैसे ही कायम है जैसे कि पहले हुआ करता था।

0: और ये फिर साडा चिड़िया दा चंबा है। गाने वाली मुसर्रत नज़ीर की आवाज़ ने शादी ब्याह के दिनों में बहुत से लोगों को रुलाया।
1: और दुल्हन की बहनें दूल्हा की जूती छुपाती हैं और उस वक्त तक वापस नहीं देती जब तक कि दूल्हा पैसे ना दे। आज लड़की माँ बाप के लिए गैर हुई, आज उसे अपने घर की दहलीज फलांग कर एक नए घर में जाना है। बिछड़ने का गम होता है, आने वाले दिनों की आस होती है। कुरान पाक की छाँव में एक नए हमसफर के हाथ में हाथ देकर, दामन में दुआओं के फूल डालकर उसे रुखसत कर दिया जाता है। डोली उठती है, सहेलियां रो रो कर गीत गाती हैं।
0: और जी ये प्यारे से गीतों की एल्बम मुसर्रत नज़ीर जब कनाडा से वापस आए तो उन्होंने पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को ये एल्बम गिफ्ट की। इतने सालों के बाद मुसर्रत नज़ीर जब पाकिस्तान में आई तो उनकी ज़िंदगी के इस नए मरहले में भी उनकी शाइस्तगी और वकार वैसे ही देखने को मिला जैसे कि उनके अरूज के दिनों में था। मुसर्रत नज़ीर का एक गीत आज धुन और दास्तां में शामिल रहेगा और यकीन आज का ये गीत आपको अच्छा लगेगा। सामने वो गीत है जो कि अक्सर लड़कियों को उनके माँ बाप को उदास करता है। कोई कितने भी दावे कर ले कि वो उदास नहीं होता, लेकिन इस गीत को सुनकर उदासी कहीं ना कहीं से आकर लिपट जाती है।

और जी ये प्यारी सी मुसर्रत नज़ीर जो कि कनाडा में मुकीम हैं और कुछ उनकी एज हो गई है, लेकिन ये कि उनका वो जो एक अंदाज था उनकी शाइस्तगी आज भी दिलों को छू लेती है। सो ये प्यारा सा गीत जी आज के इस प्रोग्राम में हमने शामिल किया और आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ एक बार फिर से रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM से। एक प्यारा सा कलाम जी हाँ खूबसूरत सा गीत आप सबको सुनवाते हैं और यकीन ये प्यारा सा गीत आपको अच्छा लगेगा। पंजाबी सॉन्ग डॉक्टर फरीद चौधरी। आप हमेशा पंजाबी गीत की फरमाइश करते हैं सो आपकी पसंद आपके साथ साथ तमाम सुनने वालों के लिए

और ये प्यारा सा गीत डॉक्टर प्रीत चौधरी आपके लिए, और इस वक्त मिसेस अनंत आप ही सुन रही हैं हमें, और आप तबीयत की खराबी के बाद भी रेडियो फजा को सुनती हैं और सब प्रेजेंटर्स के लिए सलाम भेजती हैं। बहुत शुक्रिया आपका, और अली आपका भी शुक्रिया एक बार फिर से आप शामिल हुए। मिसिस हान आपका भी शुक्रिया अदा करते हैं। मिर्जा भाई आपका भी शुक्रिया, अजरा आप सुन रहे हैं बहुत शुक्रिया, और उन तमाम लोगों का शुक्रिया जी जो कि इस वक्त हमें खामोशी से सुन रहे हैं सड़क पर चलते हुए। जैसा कि हमने पहले बताया कि नॉटिंघम में बहुत सारी जगहों पे जो है वो रोड वर्क्स हो रहे हैं, और उसकी वजह से आपको घरों से पहले निकलना चाहिए, क्योंकि अगर आप देर से निकलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं आप फंस सकते हैं, आपको देर हो सकती है। सो घरों से जल्दी निकलें ताकि आप अपने अपार्टमेंट पर, अपने काम पर, कहीं पर भी आप जा रहे हैं तो आप जल्दी से पहुंच सकें। तो नॉटिंघम में बहुत सारी जगहों पे रोड वर्क्स हो रहे हैं, और आज सुबह बारिश होने की वजह से भी बहुत सारी जगहों पे जो थी वो ट्रैफिक जैम थी और बहुत ज़्यादा रश था। सो इससे पहले कि पैनिक हों, दूसरों को भी पैनिक करें, क्यों ना ऐसा हो कि हम घरों से थोड़ा सा जल्दी निकल जाया करें। और गाड़ियों में हमने कई बार देखा जी कि गाड़ी चलते हुए लोग अपना डिस्टेंस कम रखते हैं, जिसकी वजह से एकदम से ब्रेक लगाते हैं और बैठे हुए पैसेंजर वो भी हर्ट होते हैं, और फिर ये कि ड्राइवर भी पैनिक होता है, और जो दूसरा शख्स होता है जो आपकी गाड़ी से आगे होता है वो भी पैनिक, उसको भी हम करते हैं। सो एहतियात से ड्राइव किया करें, रातों को जल्दी सोएं और सुबह जल्दी बेदार हों, घरों से निकलते हुए नाश्ता चाय का कप ज़रूर पिएं, और एक अहम बात कि घरों से कभी भी लड़ झगड़ के ना निकला करें।

और जी वेलकम बैक टू रेडियो फजा 97.1 FM और प्यारी सी गजल आपकी समातों तक पहुंचाने की कोशिश। गुलाम अली खान साहब की आवाज, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह, बहुत ही प्यारी सी गजल, उम्दा शायरी और गुलाम अली खान साहब की आवाज उन तमाम लोगों के लिए जो कि गजल सुनने का शौक रखते हैं, शाम का खूबसूरत सा पहर और प्रोग्राम आप सुन रहे थे नूर दास्तां।

0: और हजरत जी आपकी वॉइस मैसेज आया तो उस वॉइस मैसेज को हम अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे. एक खूबसूरत पैगाम असरा जी ने दिया जो कि प्रोग्राम में सुन रही हूँ.
1: आप ठीक है? आपका शो सुन रही हूँ. बहुत अच्छा शो जा रहा है और आपकी आवाज की क्या बात है. कभी उसको मैंने चेंज हुआ नहीं देखा ना सुना माशाल्लाह. आज बेटियों की उदासी की आप बहुत गीत लगा रही हैं. अल्लाह सब बेटियों को खुश रखे. हमें पुराना वक्त याद आ रहा जब आप इस उम्र में होती थी मैं होती थी तो ये गीत सुन के उदास होते थे. तो आज भी वो वक्त याद आ रहा. तो आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा. सबके टेक्स्ट मैसेज भी आप बता रही हैं. मैसेज भी आ रहे हैं बहुत सारे.
2: बहुत सारी जगहों पे
1: आपकी बातें भी नाल सुन रही हूँ. दो दिन बारिश होती रही आज तो नहीं हुई. सुबह हो रही थी पता नहीं
2: क्यों ना ऐसा.
1: इस वक्त कितना प्यारा मौसम बना हुआ. कितनी खूबसूरत धूप निकली है. यही धूप गर्मियों में खाती थी तो सर्दियां शुरू हुई हैं तो कितनी अच्छी लग रही है.
2: जिसकी वजह से एकदम से ब्रेक.
1: ओके अल्लाह हाफिज. मैं आपकी बातें सुन जाए तो रिकॉर्ड करूँ.
2: और फिर एक ड्राइवर भी पैनिक होता है.
0: और जी ये था अजरा जी का खूबसूरत सा मैसेज. बहुत शुक्रिया अजरा जी. आप सुनती हैं और फिर अपना हिस्सा भी डालती हैं. उन तमाम लोगों का शुक्रिया जो कि खामोशी से सुन रहे हैं. लेकिन क्या कहते हैं कि बोल के लब आसात हैं तेरे. ज़रूर बोला करें. अपनी फीडबैक अपनी राय ज़रूर दिया करें. टेक्स्ट मैसेज के ज़रिए ऑन एयर आकर भी कहते हैं कि बात करें तो फिर बात जो है वो आगे बढ़ती है. बात से बात को बात मिलती है तो फिर बात दूर तलक जाती है. जी तो प्यारी सी अजरा जी का बहुत शुक्रिया. तहे दिल से शुक्रिया. और जी हाँ क्या कहते हैं कि अली का शुक्रिया. अली बहुत शुक्रिया फिर दोबारा से आपने अपनी वो मैसेज भेजा. सो रेडियो फ़ज़ा 97.1 FM प्रोग्राम हमारा भी अहतमाम की जानिब रवा दवा है. बहुत प्यारे से गीत इस वक्त हमारे सामने हैं और एक प्यारी सी गज़ल जो कि हम इस वक्त प्रोग्राम में शामिल कर रहे हैं. और ये गाने वाले हैं सुलेमान अलवी. और इनकी जितनी भी गज़लें थी कमाल गज़लें थी. खूबसूरत शायरी और खूबसूरत अंदाज आज के प्रोग्राम में धुन और दास्तां. अजनबी शहर के अजनबी रास्ते मेरी तन्हाई पर मुस्कुराते रहे. बहुत प्यारी सी गज़ल. उसकी शायरी इतनी उम्दा है कि दिल चाहता है कि इंसान बार बार सुने.

और साहिल पे खड़े हो चले जाना। इस गीत के साथ हम अपने प्रोग्राम को ख़त्म नहीं करेंगे। एक प्यारा सा पाकिस्तानी लोकगीत है, उसे आपको सुनवाते हैं। समय सबका शुक्रिया अदा करती हूँ और अगले हफ्ते मिलने की उम्मीद भी रखती हूँ, लेकिन आप सबसे यही कहूँगी कि अपना ख्याल रखा करें, अपने साथ जुड़े हुए रिश्तों का भी। और जैसे कि मिर्ज़ा भाई ने पहले कहा था कि मौसम क्योंकि बदला है और मुख्तलिफ किस्म के वायरसेस जो हैं वो फैले हुए हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोग सीरियस होकर हॉस्पिटल्स में भी गए, सो कोशिश करें कि अगर ज़्यादा लोगों के क्राउड में जाएं तो कुछ मास्क वगैरह पहने, और घरों में जो ये हमारे देसी कहवे हैं ये ज़रूर पिया करें। इनमें कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता, फ्रेश पुदीना डालें, सब्ज़ इलायची डालें, दार चीनी डालें, एक दो लौंग डाल लें, और फिर उसमें हनी डाल के उसको पी लें। जो शानदा मिलता है उसके पैकेट्स मिलते हैं वो पी लें, और कोशिश करें अपने आप को गर्म रखने की, और बेड पर जाने से पहले कहवा गर्म ज़रूर पी लिया करें, और पानी में नमक डाल के पानी के गॉगल्स ज़रूर करें, क्योंकि उससे ये होता है कि हमारे गले में कोई ख़राश लगती है तो उससे सूदिंग सा एक इफ़ेक्ट आता है। पैरास्टामोल किसी दवाई का नाम तो हम नहीं ले रहे, लेकिन ये कि अगर कहीं पर ज़्यादा वायरस या कोई चीज़ बढ़ जाए तो डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। कभी सांस की तंगी महसूस हो तो भी अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। अपना ख्याल रखें और ज़रूर रखें क्योंकि मौसम बदल रहा है।

भी एक मौसम दूसरे मौसम का हाथ छोड़ता है तो फिर इंसान क्या, जानवर क्या, कायनात पूरी ही बीमार हो जाती है। और जाने से पहले यही कहूंगी एक बार फिर से कि अपना ख्याल रखें, अपने साथ जुड़े हुए बहुत सारे रिश्तों का भी और हमारा भी रखा करें, प्रोग्राम में शामिल हुआ करें। और मुझसे पहले जो प्रेजेंटर थे उन्होंने जो प्रोग्राम किया उनका भी शुक्रिया। ढेर सारी दुआओं के साथ फी अमान अल्लाह।

0: 7.1 FM।
1: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड एप।
2: You are listening 97.1 FM.

अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेरी गुड इवनिंग। जी उम्मीद करते हैं जी तुसा खैर उफियत नाल हो। सो वेलकम टू रेडियो फिजा 97.1 FM।

बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस वगैरह आए सन. ऑब्वियसली आई वाज एन एयर फॉर पास्ट कपल ऑफ वीक्स एंड नाउ आई एम बैक इन द स्टूडियो. तुसने अपने रेडियो रेडियो फजान स्टूडियो में पहुंच गया. तो उम्मीद करना जी साढ़े भैन भ्रा साढ़े दोस्त बाब ऑल माई टैक्सी ड्राइवर्स ओ माई टेक वेज रेस्टोरेंट्स ऑल द बिजनेस वेयर एवर यू आर तुसा सारे की वेलकम करने एंड असा को अज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है. एज ऑलवेज आई ट्राई टू मेक श्योर दैट आई डू नॉट मिस एवरी ट्यूजडे इज माई टाइम एंड ट्यूजडे इज योर टाइम. पहले साड़ी टाइमिंग होनी सी 7 to 9 हूँ साड़ी टाइमिंग थोड़ी जी चेंज होगी है जी. साड़ी टाइमिंग होगी है 6 to 8. ऑब्वियसली हेडिंग इनटू विंटर नाउ एंड देयर आर मेनी अदर चेंजेस विच टेक प्लेस एंड प्रोग्रामों की टाइमिंग अक्सर चेंज होनी रहनी है. कोई मसला नहीं होना एज लॉन्ग एज लिसनरशिप इज लिसनिंग.

तो शुरू करने जी सा अपना प्रोग्राम, अपने प्रोग्राम का पहला टाइटल ऑब्वियसली द फर्स्ट ट्रैक ऑफ आवर प्रोग्राम इज ऑलवेज, तुसें बताना माड़ी कोशिश होनी है कि जिहड़ा भी प्रोग्राम असं करने आ उसी सोहणे रब दे नां तों इब्तिदा होनी है बंदे नी। ते नुसरत फतेह अली खान इज वन ऑफ माई फेवरेट, उन्हां दा इक कलाम मैं तुसां वास्ते लाना वा, आई होप यू गाइस विल एंजॉय इट। So in the meanwhile, you keep listening to Radio Fazaar 97.1 FM / Dab Radio. This is on our radio. Radio Fazaar, entertainment, communication, entertainment,

तुसें अपना रेडियो चैनल है जी, तुसें अपना शो असें पेश करी रहे, तुसें वास्तै जितने भी प्रोग्राम पेश किए जाने ऑब्वियसली ट्यूजडे इज माई डे, ट्यूजडे जितने भी अज सुबह तो लैके शाम तक जितने भी ये प्रोग्राम पेश किए तुसें वास्तै, सारे तुसें वास्तै, साड़ी कम्यूनिटी वास्तै, एंड इट्स फॉर एवरीबडी, ऑल द कम्यूनिटी, नॉट जस्ट विद इन आवर कम्यूनिटी बट ऑल्सो ऑल द साउथ एशियन कम्यूनिटी. जेह्ड़ी मर्जी जबान च प्रोग्राम पेश किया जाए, सुनिया करो, फीडबैक दिया करो, फीडबैक बड़ी जरूरी होनी है.

तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी. बड़ा ट्रैक बाय नुसरत खान. सुनो तो मजे की नो इस ब्यूटीफुल ट्रैक.

बिल्कुल जी, तुम्हें दिल लगी। बिल्कुल जी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, दिल लगी हो सीधी याद ऐसी। It's a beautiful track by Nusrat Ali Khan. You are listening to Radio Fizz 97.1 FM / Dab Radio. ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। बिल्कुल, काम कोई भी आसान नहीं होना, तुसा की आसान करना पैना, बनाना पैना।

जी तो गल हो रही है जी, अज असा टॉपिक जड़ा है बड़ा सोहना जो टॉपिक असा रखा, मनी मैटर्स। पैसा जड़ा है ना वो जरूरी है, मनी मैटर्स।

बरसों हो गए बिछड़े, अब साथ नहीं हो तुम, फिर ऐसा क्यों लगता है जहां मैं हूं वहीं हो तुम। क्या करूं मैं अपनी उंगलियों का, किसी की भी तस्वीर बनाऊं तुम्हारी बन जाती है। ये सिर्फ मेरा पागलपन है या

0: तारा कहाँ चली गई थी तुम? ढूंढते ढूंढते परेशान हो गया था।
1: राज
0: तुम ठीक तो हो?
1: राज
0: गिव मी अ सेकंड।
2: हे सॉरी ब्रदर, एक्चुअली शी इज माय वाइफ एंड शी इज मेंटली अनवेल। अब कुछ भी याद नहीं है उसे, सब कुछ भूल चुकी है, बस राज राज करती रहती है। पता नहीं कौन है ये राज। Anyways, sorry bro, I'll take your leave, okay?
3: जवाब मिल गया मुझे। मैं तुम्हारी जिंदगी में कहीं नहीं था, फिर भी मैं ही तुम्हारी जिंदगी था।

असांखे डेडिकेशन जी रिक्वेस्ट आई सी बाए सॉन्ग बाए मैडम नूर जहां दिलदार सदके लख वार सदके मालका इतरानम नूर जहां। बिल्कुल जी पापा असां ये अपनी तरफों भी अपने पापड़े असगर होगी भी डेडिकेट करने क्योंकि पापा असगर ऑब्वियसली ये तुसा दी जवानी ने दिहाड़े ने गाने क्या हाल है पापा में सही पाया या नहीं पाया जी। सब को स्ट्रेट ट्रैक दिलदार सदके लख वार सदके बाय मैडम नूर जहां। ब्रदर यू डिड नॉट मेंशन मी द नेम यू जस्ट सेड कैन यू प्लीज प्ले मी दिस ट्रैक। गल हुई थी जी पैसे के हवाले नाल मनी मैटर्स। पैसा जरूरी है, क्यों जरूरी है, केड़ी वजह से जरूरी है, पैसे नहीं असानी जिंदगी क्या हैसीयत है। ये ऑब्वियसली बहुत सारे बंदे मैसेजेस की दें थैंक यू सो मच। ये चीज़ असं चाहने तुस अपने ख्यालात ना इजहार लाजमी करया करो। जी ते तुसा सुनी रहे रेडियो फिजा 97.1 FM/DAB Radio। प्रोग्राम पेश किया जा रहा रंगे कश्मीर तुसा खिदमत जी चुल्हे जी दिलदार सदके लख वार सदके।

0: or visit our website www.ecfss.com to secure a no obligation quote today.
1: राहिला बहन बहुत बहुत मुबारक हो, आपके बच्चों ने GCSE और SATs एग्जाम्स बड़े अच्छे नंबरों से पास किए।
2: भाई मुबारक तो हो सलासा ट्यूशन सेंटर वालों को, जिनकी मेहनत से बच्चों ने GCSE मैथ्स, इंग्लिश और साइंस में A stars और SATs में ग्रेटर डेप्थ हासिल किए हैं।
1: सलासा ट्यूशन सेंटर?
2: जी हाँ, इनकी एक ब्रांच न्यू बेसफोर्ड NG7 7FY और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
2: मसला ही कोई नहीं, सलासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रابطہ करता हूँ।
3: जी हाँ, आज ही रابطہ कीजिए सलासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
4: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders, transforming spaces, building trust.

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Hazar 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड ऐप।
6: Commercial time.
7: Rosehead Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosehead Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosehead Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 07577292926 or email rosehead-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosehead Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
8: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
9: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
8: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
9: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
8: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी हैं।
9: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
8: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गए की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
7: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेंसडे टू मंडे।
8: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
10: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
11: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
12: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
11: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
12: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
11: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
12: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
13: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
11: Park Foods, जो नाम है मायार का।
14: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
15: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
14: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 AM till 10:30 PM.
15: Visit us at 136-138 Alfreton Road, Nottingham.
14: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
16: You are listening 97.1 FM.

0: Marketing, strategic thinking, and delivering results, this opportunity is for you. Apply online today at www.breezeconnect.org.uk. Build your future with Breeze Connect.
1: Oye, khushiyan manao, pangde pao, pangde pao, pangde pao.
2: Aaj to bahut khush lag rahe hain. Khair to hai.
1: मेरी बीवी का वीजा हो गया जी।
2: ओहो मुबारकबाद, बहुत जल्दी आ गया।
1: सारी नसीब दी गल है, मैं लोकल वीजा मायरीन दी मदद लई सी जी।
2: उनका नाम ही बता दे, हमें भी कभी जरूरत पड़ सकती है।
1: AMH सॉलिसिटर्स। और कौन? ओ वधिया ने, दोस्ताना माहौल, तेज ते जल्दी काम कर दे रहे। सोने ते स्वागा ये कि हर तरह का वीजा एक्सटेंशन, इनडेफिनेट लीव टू रिमेन और सिटीजनशिप एप्लीकेशन भी कर दे रहे।
2: चले उनका पता भी बता दे, आपको तो जुबानी याद होगा।
1: हाँ जी क्यों नहीं, नॉटिंगम रोड, न्यू बेसफोर्ड, नॉटिंगम।
2: जबरदस्त, मैं उनसे राब्ता करूंगी अपनी फैमिली के वीजा के लिए। नंबर क्या है?
1: लो जी ओ भी जुबानी याद है, 0115-671-3677। प्योर जिम दी बिल्डिंग विच ने, मुफ्ता मशवरा लो जी।
3: AMH Solicitors, Immigration Lawyers at Sovereign House, 184 Nottingham Road, New Basford, Nottingham, NG7 7BA. Large free car park available, or call them on 0115 671 3677.

0: या फिर इंग्लिश और अरबिक। तो सुनते रहिए
1: फजान 97.1 FM।
0: हो गया ना कमाल।
2: This is a public service announcement.
3: The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Hazza 97.1 FM.
7: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन। सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।

0: हाँ हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

0: वॉल्यूम बढ़ाइए क्योंकि अगला गाना है और भी जबरदस्त।
1: जिवें बदलां दे ओले होया चन,
0: ये है असली म्यूजिक का मजा सिर्फ और सिर्फ फजा 97.1 FM पर।
2: The best songs on the radio. This is my only favorite station.
3: Radio Fazan 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: इंग्लैंड में हम पानी का इस्तेमाल उतनी तेजी से कर रहे हैं जितनी तेजी से प्रकृति इसे दोबारा भर नहीं सकती। अगर कुछ नहीं बदला तो 2055 तक हमें हर दिन 5 बिलियन लीटर से भी अधिक पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है और वेल्स में अधिक गीली सर्दियां और अधिक सूखी गर्मियां पानी की सप्लाई पर दबाव डाल रही हैं। हम में से अधिकतर लोग सोचते हैं कि हम दिन में 30 लीटर पानी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत में ये 140 लीटर के करीब है। हम सब कुछ साधारण बदलाव करके पानी बचाने में मदद कर सकते हैं। शावर लेने में कम समय लगाएं, लीक करते नलों या टॉयलेट को ठीक करें, चलते हुए नल की बजाय बर्तन धोने के लिए वॉशिंग अप बाउल का इस्तेमाल करें और अपने डिशवॉशर या वॉशिंग मशीन पर एको मोड चुनिए। पानी अनमोल है, इसकी इज्जत के लिए हम सबको कम पानी का इस्तेमाल करना होगा। हर दिन पानी बचाने के आसान तरीकों के लिए लेट्स सेव वाटर सर्च करें या letssavewater.com पर जाएं।
2: Attention property owners and letting agents. Are you in the process of obtaining a HMO license for your property? Look no further than Elite Care Training Academy, your risk assessment surveyors and trusted partner in ensuring compliance and safety. At Elite Care Training Academy, we specialize in conducting thorough risk assessments to help you navigate the HMO licensing process with ease. So what are you waiting for? Call Elite Care Training Academy today at 01159 704 135 or 07541 181 746. Visit our website at www.elitecareacademy.com to explore our training options and secure your spot in our next class.
3: जी नासिर साहब, सुनाइए कैसे हैं आप और कहां तक पहुंची आपकी दुकान की रेनोवेशन?
4: बिल्कुल ठीक हूं यार, लेकिन दुकान की रेनोवेशन तो कंप्लीट हो चुकी है, बट कोई यार ना फिनिशिंग ना कोई क्वालिटी वर्क, बस मजा नहीं आया। अब सोच रहा हूं कि घर को अपग्रेड करना है, रेनोवेशन का काम है, किससे रابطہ किया जाए?
3: आपने मुगल बिल्डर्स का नाम नहीं सुना?
4: मुगल बिल्डर्स?
3: जी हाँ, मुगल बिल्डर्स, चाहे नया किचन हो, मॉडर्न और स्टाइलिश बाथरूम या फिर पूरा मेकओवर, मुगल बिल्डर्स हैं वो एक्सपर्ट्स जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं।
5: जी, मुगल बिल्डर्स किचन फिटिंग और वर्क टॉप से लेकर बाथरूम टाइलिंग, फिटिंग्स और रेनोवेशंस, पेंटिंग और डेकोरेटिव फिनिशेस, लेमिनेशन, विनाइल और वुडन फ्लोरिंग, प्लास्टरिंग, ड्राई लाइनिंग और जो भी काम बिल्डिंग से रिलेटेड हो करते हैं ना मुगल बिल्डर्स।
3: मुगल बिल्डर्स स्टार्ट से फिनिश तक सब कुछ करते हैं।
5: मुगल बिल्डर्स, साफ सुथरा काम, बेहतरीन फिनिशिंग और मुनासिब दाम। तो अभी कॉल करें 07440363063 या 07421077999 पर फ्री कंसल्टेशन एंड कोट।
3: मुगल बिल्डर्स, जगह बदले भरोसा तामीर करें।
6: टर्न इट अप, रेडियो फाजा 97.1 FM।

0: This is a public service announcement.
1: Everybody. The station.
2: That plays
3: foot tapping music.
4: Huzza 97.1 FM.
5: यही है आपका अपना रेडियो स्टेशन फजा 97.1 FM, जहां हर धुन के साथ चलती है आपकी धड़कन, सॉन्ग्स, बातें और वही अपनापन, सिर्फ यहां। तो जुड़े रहिए, सुनिए और महसूस कीजिए हर लम्हा फजा 97.1 FM एंड डेप।
6: ठहरिए जरा, ये कमर्शियल तो सुन ले।
7: जी हाँ, मराया रेस्टोरेंट में मिडल ईस्ट के असली जायके के साथ अपना दिन शुरू करें। सुबह का आगाज ऑथेंटिक अरेबिक ब्रेकफास्ट के साथ, फ्रेश बेक्ड ज़ातर ब्रेड जो पिघले हुए चीज के साथ और भी लजीज हो जाए, गर्मा गर्म रोटी सीधी ओवन से, क्रीमी हुमस और ताजा तैयार की हुई फलाफल जो हर बाइट में फ्लेवर से हो भरपूर। और जब आप कुछ वाकई ही यादगार खाना चाहते हैं तो जरूर ट्राई करें मराया रेस्टोरेंट की स्पेशल सिग्नेचर डिश लेजेंडरी स्पेशल मंदी, स्पेशली कुक्ड फॉर अनबीटेबल टेस्ट, खुशबूदार और रिवायती मसालों से भरपूर। चाहे ब्रेकफास्ट हो, ब्रंच, लंच, डिनर या टेक अवे, मराया रेस्टोरेंट हर दफा लाजवाब जायके और बेमिसाल सर्विस के साथ। रोजाना टाइमिंग सुबह 9:30 से रात 10:30 तक। विजिट करें 136-138 Alfred Denton Road, Nottingham, या अभी रब्ता करें 07593

0: 1-650-669 मराया रेस्टोरेंट, जहां हर मील बन जाता है एक यादगार लम्हा।
1: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
2: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
1: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
2: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
1: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार, सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताज़ा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
2: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
1: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ अरियाना सुपरमार्केट नाउ। ताज़ा गर्म और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स अरियाना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
3: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
1: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी राब्ता करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: अरियाना सुपरमार्केट, 126132 ग्रैसिंगटन रोड, NG8 3P, नॉटिंघम, मंडे टू सैटरडे 8 AM to 8 PM, संडे 10 AM to 8 PM। अरियाना सुपरमार्केट, फ्रेशनेस यू कैन ट्रस्ट, प्राइसेस यू'ल लव।
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.

0: हाँ हाँ बस चिल मारो और सुनते रहो नॉन स्टॉप म्यूजिक।
1: हमने तो जब कलियां मांगी
0: सिर्फ फजाना 97.1 FM पर।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

0: their full potential. SLASA, Students Learning and Skills Academy.
1: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
2: जी, मैं कहाँ हो सकता हूँ? या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
1: अरे जाने दें, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
2: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
1: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
2: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
3: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, जो नाम है मायार का।
4: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमराह चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ, अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें, मेरा नाम है रेडियो फजा।

क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोही हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिलें। मेरा नाम है रेडियो फजा।

न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं, न जाने इनमें कौन है मेरे लिए। जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

माँ किसे किसे पुकारिए, किसे किसे पुकारिए, जवानियाँ ये मस्त मस्त बिन पिए जलाती चल रही है राह में दिए, न जाने इनमें किसके वास्ते हूँ मैं।

0: क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? मेरा नाम है फजा। रोजो शब्द के धारे में, सुबह शाम के तारे में, वक्त के हमरा चलते हुए, मालूमात भी देते हुए, शोखी हूँ, शरारत हूँ, संजीदा हूँ, महारत हूँ। अपनी उदासी दूर करें, बिजनेस को मशहूर करें, आइए आकर मुझसे मिले। मेरा नाम है रेडियो फजा।
1: सुकू सुकू। आई आई।

0: बेखबर चलता हूँ अपनी डगर, मंजिल है मेरी प्यार।
1: अय्या सुकू सुकू,
0: अय्या करूँ मैं क्या, सुकू सुकू खो गया दिल मेरा, सुकू सुकू।

0: हाथों में जो हाथ है जीवन भर का साथ है, सीधी सच्ची बात है कहानी ना समझो।
1: अय्या सुकू सुकू
0: अय्या करूँ मैं क्या सुकू सुकू।

0: और दूसरी ब्रांच स्नेंटन डेल NG2 4LG में है।
1: लेकिन मैं तो यूनिवर्सल क्रेडिट पे हूँ और फुल ट्यूशन फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता।
0: मसला ही कोई नहीं, स्लासा ट्यूशन सेंटर नॉटिंघम ऑफ स्टेट रजिस्टर्ड है और यूनिवर्सल क्रेडिट वालों के लिए 85% डिस्काउंट अवेलेबल है।
1: फिर तो मैं आज ही उनसे रब्ता करता हूँ।
2: जी हाँ, आज ही रब्ता कीजिए स्लासा ट्यूशन सेंटर 07968046444 या 01159168231। कुछ बन गए आज तो कल काम आएगा।
3: Planning to upgrade your home or business space? Whether it's a brand new kitchen, a stylish bathroom, or a complete makeover, Mogul Builders are the experts you can rely on. From kitchen fitting and worktops, bathroom tiling, fitting and renovations, painting and decorative finishes, laminate, vinyl, and wooden flooring, to plastering, dry lining, and minor building work. Mogul Builders handle it all, from start to finish. Clean work, quality finish, fair prices. Call 07440-363063 or 07421-077999 for a free consultation and quote. Mogul Builders. Transforming spaces, building trust.
4: You are listening to Radio Fazza on 97.1 FM.
5: You are listening 97.1 FM.

0: It's commercial time.
1: Rosyd Hire Limited Taxi and Rental Services. Looking for a reliable taxi or vehicle rental service in Birmingham? Choose Rosyd Hire Limited, your trusted partner for safe, comfortable, and affordable transport across Birmingham and the surrounding areas. Whether you need a local taxi, airport transfer, or vehicle rental, Rosyd Hire Limited is here to help with a professional and friendly service. Book today by calling 075-7729-2926 or email rosyd-hire@hotmail.com. Visit us at 25 Wolseley Street, Birmingham, B94NW. Rosyd Hire Limited, getting you where you need to be, safely and on time.
2: हेलो उस्मान, कहाँ हो यार?
3: कहाँ होना है, ट्रैफिक में फंसा हूँ।
2: अरे इतनी टेंशन में क्यों, जल्दी क्या है
3: यार? घर की ग्रोसरी करनी है, सब्जियाँ लेनी है, फल लेने हैं, गोश्त ले।
2: अरे वेट वेट वेट वेट, तो इतनी परेशानी क्या यार? यार सुपरमार्केट चक्कर लगा लो ना, जहाँ से ताजा फल और सब्जियाँ, हलाल गोश्त, एशिया और मिडिल ईस्टर्न की ग्रोसरी और रोजमर्रा घरेलू जरूरियात की तमाम चीजें मौजूद हैं। और हाँ, ये HMC सर्टिफाइड भी है।
3: चलो ये सब तो वहाँ से मिल जाएगा, मैं पिज्जा लेने कहाँ से जाऊँ?
2: अरे पिज्जा की क्या टेंशन है, एस्प्ले पिज्जा इज अ पार्ट ऑफ आर्याना सुपरमार्केट नाउ। ताजा गरम और आपकी पसंदीदा टॉपिंग्स के साथ और सारे इंग्रेडिएंट्स आर्याना के अपने हैं। चाहे लंच हो, फैमिली डिनर या रात गे की क्रेविंग, मजेदार खाने की ख्वाहिश है तो फिर सिर्फ और सिर्फ एस्प्ले पिज्जा।
1: फ्रॉम 12:30 PM टू 11 PM एवरी वेडनेसडे टू मंडे।
2: और इसके अलावा होम डिलीवरी भी अवेलेबल है। होम डिलीवरी के लिए अभी रابطہ करें 0115-929-8484 या 0770210793।
4: Ariana Supermarket, 126132, Grassington Road, NG8 3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
5: हेलो, कहाँ पर हैं आप?
6: जी मैं कहाँ हो सकता हूँ, या आपके दिल में या फिर ऑफिस में?
5: अरे जाने दे, बातें बनाना तो कोई आपसे सीखे, हमारे लिए तो वक्त ही कहाँ है आपके पास।
6: आए हाय, हर वक्त मिर्चें चबा के रखती हैं आप।
5: अरे मिर्चों से याद आया, घर में ना आटा है, ना दालें हैं, ना चावल हैं, और ना ही आपकी कॉफी मौजूद है, और इसके अलावा ग्रोसरीज की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन आप तो आप है ना।
6: तो फिक्र किस बात की है, पाक फूड्स है ना, जहाँ पर ग्रोसरीज की तमाम आइटम्स निहायत ही मुनासिब रेट्स पर अवेलेबल हैं।
7: When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
5: Park Foods, जो नाम है मायार का।
8: Discover the authentic taste of the Middle East at Mariah Restaurant in Tooting with a breakfast experience full of rich Arabic flavors. Enjoy freshly baked manioush straight from the oven, topped with delicious melted cheese, warm traditional breads, creamy hummus and crispy fresh falafel prepared daily.
9: And when you're ready for something truly unforgettable, treat yourself to Mariah's signature dish, the legendary Especial Mandi. Slow cooked, aromatic and rich with traditional spices.
8: From breakfast and brunch to lunch, dinner and takeaway, Mariah Restaurant brings quality food and excellent service together under one roof. Open daily from 9:30 a.m. till 10:30 p.m.
9: Visit us at 136 138 Alfreton Road, Nottingham.
8: Or place your order today on 0759-315-0669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
10: You are listening 97.1 FM.

0: 7593150669. Mariah Restaurant, bringing the real taste of Arabia to your table.
1: आप कैसा म्यूजिक सुनना चाहते हैं?
2: साली तू मानी नहीं, कभी तो मानेगी।
1: पॉप फिल्मी गाने,